0: दुनिया में अगर जन्नत है तो बस यही है यही है यही है
1: रेडियो सुनो 91.7 FM Qatar's favorite radio station